गुरु प्यारे साध संगत जीओ, कीर्तन दी तनखास जी आप जी ने प्रवान करनी हुई गलतियां दी खिमा असीस बख्शिश करनी फतेह गजाउनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।